0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: I have

0: लेने का नाम, लेना लूना कुछ नहीं होता। मोहब्बत आपके अंदर एक चीज़ है, जैसे आपके अंदर एक एनर्जी है तो है, जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी है तो है, जैसे आपके अंदर अच्छाई है तो है। अगर है तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं देनी है, दिखानी है, दिखेगी ये। जैसे जैसे बेवकूफ़ी नहीं छुप सकती ना, वैसे अकलमंदी भी नहीं छुप सकती, आप जो मर्ज़ी कर लें। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। आपका एक दोस्त है, आपके साथ अच्छे हैं, वो अगर आपके साथ अच्छा है आगे से तो बुरी बात है। ये कंडीशंस में भी आ जाए कोई बात नहीं, इंसान की जितनी मोहब्बत है, क्योंकि इंसान जो है ना, रब अनकंडीशनल मोहब्बत कर सकता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड सब कुछ है। इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड विजडम है, लिमिटेड सब कुछ है। अगर उसमें वो ट्रांजैक्शनल भी चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दे लेके है तो कोई बात नहीं। माँ बेटे का रिश्ता भी देने लेने पे ही है, दोस्तों का भी देने लेने पे है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप नहीं खा सकते, आपको शेयर करना है। सब कुछ आप नहीं जान सकते, आपको शेयर करना है। ये कंडीशन बहुत अच्छी चीज़ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। कंडीशंस के साथ ही पूरी कर लो भाई, समझ रही हैं? जो वाउज किए हैं वही पूरे कर लो, जो मुंह से बोला है वही पूरे कर रहे हो। लोग वही पूरे नहीं कर रहे होते, वो मान ही नहीं रहे होते, ये तो बात ही नहीं थी। तो फिर शायर बेचारा कहता है, जिसने चाहा है खुद को चाहा है, और खुद को कैसे चाहा है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कोई से ही नहीं है। आप जब बात करते हैं, दुनिया में इतने बुरे हालात हैं दुनिया के, आप जब कोई बात करते हैं ना, मुझे पता कैसे पता चलता है एक आदमी होश में है कि नहीं? मैं जब उससे बात करता हूँ, उसको मुझे दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा कहना पड़े, मैं समझ कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन जब उसको मुझे 50-100 दफ़ा कहना पड़े, तो उसका मतलब है अब ये कौंड हो चुका है इसका, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सुमन बुकमन हुमयन वाली बात, ये बहरे हैं से शुरू होता है, क्योंकि सुन नहीं रहे। खुदा किताब में भी सीक्वेंस में बताता है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर आदमी कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात होती है उस बंदे में। आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते सारा कुछ ना, पार्टली भी अगर आपको कुछ अच्छाई मिल जाती है तो पार्टली को यूज़ करके आपने उससे होल बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि रब ने ये सब चीज़ें ऐसी रखी हैं, लोगों के अंदर चैलेंजेस रखे हैं। सबको अकल आ जाए तो आपको लगता है हम और आप बात कर रहे होते हैं आज मतलब इसका वो मतलब नहीं जो आपसे, इसका मतलब ये है, मेरा दोस्त था वो कहता था, भाई तू तो ऐसे कलपता रहता है, अगर सबको ये सारी बातें समझ आ जाए तो तुझे कौन सुनेगा। तो उसको आगे मैं कहता हूँ, मैं तो अकलमंद भी नहीं हूँ, तू कहता है खुद सोच, तू अकलमंद भी नहीं है तो तुझे सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो बाकी तो मैं इस ज़माने में, और मैंने क्यों कहा तू तो बेवकूफ़ों की बातें कर रहा है, इस ज़माने में जिसके जितने लिसनर है, जिसमें जितनी कम अकल है उसके उतने ज़्यादा लिसनर है, बिकॉज वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है।
1: आप पे तो बहुत अक्कल है माशाल्लाह
0: अरे
1: से।
0: बहुत अकल मेरे, ये अकल रोज़ करनी पड़ती है, ये अकल रोज़ कमानी पड़ती है, ये है नहीं। रोज़ सुबह आप उठते हैं, रोज़ सुबह जैसे आपको आज के दिन कमाना पड़ता है, रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप अगर रियाज करते हैं, ये किसी की मीरास नहीं है, समझ रही हैं? मैंने ऐसे ऐसे अकलमंदों को ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते देखा, इसीलिए कहते हैं ना, ये जो मोहब्बत का नशा है, अकलमंद और बेवकूफ़ों को एक साथ चढ़ता है। अकल किसी की मीरास नहीं है, किसी का हक नहीं है, ये चॉइसेस हैं। आप वो चॉइसेस करते रहेंगे लंबे अरसे के लिए, आप की अकलमंदी दिखती जाएगी, आप वो गलत चॉइसेस करते जाएंगे, आपकी बेवकूफ़ी दिखती जाएगी। इनको अगर ऐसे देखेंगे तो इंसान अपने आप से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बात सुन के या किसी और बंदे की बात सुन के मेरे दिमाग में किसी दिन ये बात आ जाए मैं अकलमंद हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात कहता हूँ, कुछ करता हूँ, वो खुद बहुत काफूर हो जाता है कि नहीं भाई, ये तो हर थाट के ऊपर एक अकल की थाट है, एक बेवकूफ़ी की, मैं उठा कौन सी रहा हूँ? अकल के रिश्ते हैं, बेवकूफ़ी के रिश्ते हैं, मैं उठा कौन से रहा हूँ? रियलिटी किन चीज़ों के अंदर है, ये हर वक्त ये टेस्ट चलता रहता है। तो कभी आप अकल की चीज़ उठा लेंगे, कभी आप बेवकूफ़ी की चीज़ उठा लेंगे और करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप हाउ इंक्लाइन, मिलान किस तरफ आपका ज़्यादा है? मिलान बड़ा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, है ना? कितना अच्छा सा
1: मिलान
0: लग रहा है, मिलान, इसका मतलब है इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, बड़े अरसे के बाद आए।
1: लेकिन आजादा एक इसी के साथ एक क्वेश्चन, जैसे आजकल जैसे मैं आपको अपना बताऊं, जब हम मुख्तलिफ बात लोगों की बातें सुनते हैं तो हर एक की बात को कहीं कहीं ना कहीं कुछ ठीक लग रहा होता है, तो अचानक बंदा ये कैसे डिसाइड करे कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे इसकी बात भी ठीक लग रही है, इसकी भी ठीक लग रही है, तो मैं खुद क्या हूँ? यानी ये डिसीजन आप

0: ऐसे
1: नहीं देखें, इसकी बात अच्छी लग रही है, उसकी बात अच्छी लग रही है, इसकी बात ठीक लग रही है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेता है। अगर मैं बायस नहीं हूं और मैं आई एम रूटेड इन रियलिटी और मैं लॉज ऑफ नेचर के साथ चल रहा हूं और मैं प्रेजुडिस्ड भी नहीं हूं, तो मुझे हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद सोच लें, समझ लें। और एक बात, दो बातें याद रखिएगा, मशवरा अगर है तो किससे ले रहे हैं? अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उससे मशवरा नहीं बनता, एक बात, लेना नहीं बनता, ठीक? ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता नहीं है कौन मशवरे के काबिल है और कौन नहीं है। और अगर कोई वैसे आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो अच्छी बात, तो हर समय में अच्छी बात है, तो ये पता करना। और दूसरा, वो अगर क्वालिफाइड ही नहीं है कोई बंदा, तो आप बेशक उसकी बात ना माने।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Volume up. Stay tuned. Inspire 105.1 FM.
7: Positively inspiring the community.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
10: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
11: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
12: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Wake up early, seize the light, knowledge grows with every bite. Answer questions, stay on cue, exams will be a breeze for you. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

अब अगली बात हम करेंगे एहतिनामे हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूँ, प्रोफेसर से पूछा जाके, मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, और जब आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है, और एक और पहलू से दो कम्प्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कंप्लीटली अलग चीजें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगू, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो अब वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो। आपने सीख लिया एक दफा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मजीद और इल्म सीखें और मजीद सीख लेंगे, उसके बाद मजीद और फिर मजीद और मजीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मजीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, पीएचडी तक पहुंच गए। जब पीएचडी में पहुंचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है। इल्म के मराहिल से जब इंसान गुजरता है ना, तो पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। जिसके पास ज़्यादा इल्म है वो, आप उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई, अब वो उसके बारे में सीखना चाह रहा है। वो एक दफ़ा वो दरिया वो पार कर ले, उसके सामने एक और दरिया आ जाता है, अब वो उसको पार कर रहा है। यही बात है ना। तो इल्म में क्या होता है? तरक्की। इल्म में हमेशा होती है तरक्की। लेकिन हिदायत में ना कभी ऊंचा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी आगे, कभी पीछे। इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप इल्म को किसी हद तक ओन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे इल्म है इसका। आप जबान सीख सकते हो, आपने जबान सीख लिया, आप उसको ओन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज्यादा है, कोई और ही चीज है जिसको आप कभी ओन नहीं कर सकते। और क्योंकि आप उसको ओन नहीं कर सकते और आपको उसकी जरूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह, इल्म आपको एक दफा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है। इल्म एक दफा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको, खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो, तो वो आपके पास ही रहेगा। इल्म सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। वो इल्म, किसी ने एक दफा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाजा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, एहदिना
हिदायत दीजिए, हम कितनी दफा मांगते हैं। कम से कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है और सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फर्ज 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है। और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे, बल्कि हम ये की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मरतबा हर रोज क्या मांग रहा है, हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूंगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं। कुरान ने कुरान की अपने कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। तो कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है, पानी पीता है। एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया, अब किसी और चीज़ की तरफ जिंदगी, नहीं नहीं नहीं 2-3 घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी। आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के। इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ देने से, हिदायत, एहतिना एहतिना एहतिना एहतिना एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है। आप मुझसे आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। कुरान का हिफ्ज़ करना इल्म है या हिदायत है, इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती। हिदायत का रास्ता आसान होता है, उसमें कोई शक नहीं। अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है। आपके पास मालूमात हैं, मालूमात हैं, हिदायत और चीज़ है। हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ओन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए। मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो सका, हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है। ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से क्या सिखाया जा रहा है इस, और नमाज की असल क्या है। यहाँ तक के हदीस कुदसी में फातिहा को सलात कहा गया है, फातिहा को ही नमाज कहा गया है, और इस जो नमाज की बुनियाद है वो फातिहा है। और इस फातिहा में जब मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, पता है इसका उसके मकासद में से एक मकसद क्या है, या अल्लाह ये जोहर की नमाज होने लगी है, जोहर और असर के दरमियान मेरे सामने बहुत सारे फैसले करने को होंगे, छोटे और बड़े, इधर देखूं या इधर ना देखूं, ये कहूं या ये ना कहूं, ये जवाब मैसेज में भेजूं या ना भेजूं, इस तरह से इस डील को हाँ करूं या ना करूं, यू नो, इसके बारे में किसी से और बात करूं या ना करूं, फैसले करने होते हैं ना ये हर लम्हे में, और उस हर फैसले के लिए या अल्लाह मुझे क्या दे, हिदायत दे। और फिर ये जो जज्बा होता है हिदायत तलब करने का, वो कुछ घंटों में वो सूख जाता है, और फिर नमाज का टाइम आया, फिर क्या पूछा, हिदायत दे दे मेरे रब, अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी,
उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फर्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दें और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी। और कोई आ रहा है बहुत प्यास लगी है पानी दे दें प्लीज प्लीज पानी, लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं भी लेके आता हूँ। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इन सिरात मुस्तकीम, वरना वो रहमत हो ही नहीं सकती। ये भी है इसके अंदर जिन अल्फाज में अल्लाह ताला ने कहा है इहदिनस सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप अरबी में मुख्तलिफ असालीब मुमकिन है, आप ये भी कह सकते हैं इहदिना इलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना अलस सिरात, ये भी कह सकते हैं इहदिना लिस सिरात, और ये भी कह सकते हैं इहदिनस सिरात, जैसे फातिहा में है। यानी मुख्तलिफ हरूफ इस्तेमाल हो सकते हैं, हर एक हर्फ का अपना मकसद है। मैं आपको इसका थोड़ा सा मुख्तसर तरीके से इनका फ़र्क समझा देता हूँ। इहदिना इलस सिरात है, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं पता कि जो हस्पताल है वो किधर है, तो आप कहें यहाँ से सीधा जाएं, फिर राइट टर्न लें, फिर लेफ्ट टर्न लें, फिर 5 किलोमीटर जाएं, अस्पताल आ जाएगा। यह है इला, उसकी तरफ हिदायत देना। एक एक डेस्टिनेशन है, एक आपकी मंजिल है, उस मंजिल की तरफ किसी को हिदायत दी जाए ना, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुरान ने जब जन्नत की तरफ पहुँचने का रास्ता समझा दिया ना, वो इला है, यहदीहिम इला तरीक मुस्तकीम। ये इला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में, ठीक है ना। तो इला से मुराद होगी मालूमात। जब इला आएगा ना, तो वो कौन सी मालूमात हैं जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। दूसरा लफ्ज़ है अला सिरात, इहदिना अला सिरात। अला सिरात मुराद है मैं रस्ते में हूँ और रस्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और रस्ते में चलते हुए जो रुकावटें हैं उनको मैं कैसे, उनसे मैं कैसे गुजरूँ फंसे बगैर या गुमराह हुए बगैर। यानी रस्ते पर चलते हुए क्या क्या हिदायत मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे कहें हाँ वो हस्पताल तो 5 मील दूर है, लेकिन रस्ते में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़रा आप लेफ़्ट पे रह जाना, या फलाना एक आएगा वो ये इशारा आएगा उस पर ज़रा साइड से गुजर जाना। ये क्या है इहदिना अला अस्सिरात, इहदिना अला अस्सिरात, ये दूसरा है। तीसरा क्या है इहदिना लिस्सिरात, इहदिना लिस्सिरात। लाम इस्तेमाल होता है, लाम हर्फुल गाया इसको अरबी में कहते हैं, आखिर तक पहुंचाने के लिए। यानी मैं किसी से कहूं कि सर आपने हस्पताल की डायरेक्शंस तो बहुत अच्छी दे दी, मेहरबानी करके आप मेरे साथ अगर गाड़ी में बैठ जाए ना और मुझे वहां तक पहुंचा दें, आप मुझे वहां तक पहुंचा दें, या आप मेरे साथ फ़ोन पर रहें जब तक मैं पहुंच नहीं जाता। तो क्या किया, जो इंसान आपके साथ सारा रास्ता रहे जब तक आप मंजिल तक पहुंच ना जाए, उसने क्या किया इहदिना लिस्सिरात, हमें आखिरी मंजिल तक पहुंचने तक हमारे साथ हमें गाइड करते रहें, हमारे साथ ही रहें। हम कुरान में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नत के बारे में कहा जाता है जन्नत में पहुंचने के बाद अहले ईमान कहेंगे अल्लाह हमें उन सब में से बनाए, वो हम कहेंगे अल्लाह ताला के लिए हम्द है जिसने हमें यहाँ तक हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना ली हाज़ा। लाम इस्तेमाल हुआ है, क्यों, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है अल्लाह ताला हमारे साथ पूरा रास्ता था यहाँ तक पहुँचाए, यहाँ पहुँचाने तक, यह है ली। अच्छा, फातिहा में ना इहदिना इलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना अलस सिरातिल मुस्तकीम है, ना इहदिना लिस सिरातिल मुस्तकीम है, बल्कि कोई हर्फ है ही नहीं, सीधा सीधा है क्या इहदिना अस सिरातिल मुस्तकीम, बगैर हर्फ के। तो क्या मायने हुए, इसको कहा जाता है अलउमूम अलिश्माल, यानी तमाम हर्फ शामिल हैं। इनमें से अगर एक हर्फ भी इस्तेमाल किया होता ना, तो बाकियों का हक अदा ना होता। सुबहानअल्लाह, क्या मालूमात चाहिए जन्नत तक पहुंचने के लिए, इहदिनस सिरात शामिल है।
रस्ते में क्या क्या रुकावटें आएंगी, उनको कैसे समझा जाए, इहदिना अस्सिरात शामिल है। अल्लाह ताला हमारे साथ सारा रास्ता हमारे साथ रहेगा, हुआ महकुम ऐनमा कुंतुम, उसकी मैयत उसकी सोबत हमारे साथ रहेगी, इहदिना लिस्सिरात, और वो सब शामिल करके एक ताबीर में इहदिना सिरात। सुभान अल्लाह, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। अब ये अस्सिरात के बारे में कुछ, इहदिना और अस्सिरात के ताल्लुक के बारे में कुछ बात थी। अब आगे मुख्तसर बात करते हैं सिरात के लिए, रास्ते के लिए, सही रास्ता या सीधा रास्ता तर्जुमा होगा ना उर्दू में अस्सिरातुल मुस्तकीम का। सिरात के लिए अरबी में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, सबील का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तरीक इस्तेमाल हुआ है और सिरात भी इस्तेमाल हुआ है, तो इनका थोड़ा सा फ़र्क समझ लेते हैं। तरीक असल में तरक़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किसी दस्तक देने पर, तरक़ अलबाब, दरवाजे पर दस्तक दी। जिस रास्ते पर लोग चलते रहे ना बार बार और उस पर कदम के निशान बन जाएं और फिर उस पर घास उखनी बंद हो जाए और पता चल जाए कि इस तरफ से लोग चलते रहे कई दफ़ा, उसको तरीक कहा जाता है। यानी लोगों के ज़्यादा चलने की वजह से वो तरीक बन गई, ठीक है, उसे तरीक कहते हैं। और ये आमतौर पर छोटे रास्ते होते हैं, ये लंबे रास्ते नहीं होते, ये छोटे रास्ते होते हैं। और जो छोटे रास्ते होते हैं वो आमतौर पर आपको एक बड़ी रोड की तरफ ले जाते हैं, उससे जो ज़रा एक बड़ी साइज़ की रोड होती है उसको सबील कहा जाता है। यानी इस तरह समझ लें कि जो तरीक है वो आपको सबील तक ले जाएगी, तरीक सबील तक ले जाएगी। अच्छा, सबील क्या है? सबील जो है उसकी जमा होती है सुबुल, सबील और सुबुल। सूरतुल अंकबूत में अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो तरीक छोटा और बहुत ज़्यादा चला हुआ और सबील उससे ज़रा बड़ा रास्ता। अच्छा, और सबील की जमा क्या होती है, मैंने क्या कहा था, सुबुल। अच्छा, तरीक की जमा है तराइक और तुरक, दोनों तराइक कुरान में इस्तेमाल हुआ है, गुन्ना तराइका क़िदादा सूरतुल जिन में। अच्छा खैर, सिरात अजीब लफ्ज़ है, इसकी जमा नहीं है। तरीक की जमा है तुरक और तराइक, सबील की जमा है क्या, सुबुल। सिरात की जमा नहीं है, क्यों? ये सिरात ऐसे रास्ते को कहते हैं जिसके लिए कोई अल्टरनेटिव रोड नहीं है। जैसे दो आइलैंड हैं उनके दरमियान एक ही ब्रिज है, वो ब्रिज क्या होगा फिर, सिरात, क्योंकि उस उधर पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, एक ही रास्ता है। तो तरीक से इंसान सबील पे पहुंचे और तमाम सबीलें जाके कहाँ मिलेंगी, सिरात पे। और हो सकता है कि आपका शुरू होने वाला रास्ता कोई और तरीक या कोई और सबील हो, या कोई और सबील हो, कोई और सबील हो, लेकिन बाद में जाकर सब एक जगह कहाँ मिलेंगे, सिरात के ऊपर। ना सिरात का लफ्ज़, क्योंकि उसकी जगह नहीं है, उसके और भी मायने हैं। सिरात का लफ्ज़ असल में आता है सुरात से, पेश के साथ सुरात। और सुरात अरबी में कहते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की तलवारें होती थी, कुछ तलवारें जो हैं वो ज़रा बुढ़ी हुई होती हैं और कुछ तलवारें बिल्कुल सीधी होती हैं, जो जो जो मोटी हो, चौड़ी हो और सीधी हो, उसे सुरात कहा जाता है। उसी से निकला लफ्ज़, जो सड़क कुशादा हो और बिल्कुल सीधी हो उसे सिरात कहते हैं, और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, और तमाम छोटी छोटी सड़कें तरीक और सबील उसी में आके मिलती हैं। इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, एक दफ़ा एक रास्ते पर इस रास्ते पर इंसान आ जाए तो उसको कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप किस तरफ मुड़ें किस तरफ ना मुड़ें, क्योंकि रास्ता कैसा है, बिल्कुल सीधा है। और इसके अलावा कोई और रास्ता भी है कि बस एक ही, नहीं, एक ही रास्ता है। इसमें एक और बड़ी अजीब बात यह है कि यह रास्ता लंबा होता है, यानी मंजिल तो वाज़ेह है कहाँ है, लेकिन सफ़र लंबा है, सफ़र लंबा है। अब क्योंकि कुशादा है, कुशादा होने में क्या फ़ायदा हुआ, सोचे ज़रा। हाँ, बहुत सारे लोग एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं, एक लेन नहीं है, मल्टीपल लेन्स हैं। कुछ लोग इस पे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, कुछ लोग आहिस्ता चल रहे हैं, कुछ लोग अभी नए नए किसी सबील से जाके इसमें शामिल हुए,
कुछ लोग आपसे 1,000 मील पीछे हैं, कुछ लोग आपसे 1,000 मील आगे हैं। आपको कुछ लोग अपने से आगे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपने से पीछे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग आपसे कई सालों पहले इस पूरे रास्ते से गुजर चुके, आगे आखिर तक पहुंच चुके, आप पीछे रह गए हो। लेकिन मकसद बस एक ही है, ये नहीं कहा या अल्लाह हमें इस रोड पर सबसे तेज़ गाड़ी दे दे, इस रोड पर हमें सबसे तेज़ चला दे। एक बात मांगी है, हिदायत दे दे कि जिस भी रास्ते से हम शुरू हुए हो इस सड़क तक हमें पहुंचा दे। बस एक दफ़ा इस सड़क पर आ गए, जिस रफ्तार से चलना होगा या जिसके साथ चलना होगा उसकी फिक्र हमें कम है। कम अज कम क्या है कि हम इस सड़क पर हैं। अब इस सड़क पर आने के बाद कोई हाफ़िज़े कुरान है जिसको अरबी भी आती है, तजवीद भी आती है, आलिम भी है, इस सड़क पर आने के बाद कोई 55 साल ईसाई था, कल मुसलमान हो गया, अब वो इस सड़क पर, वो पीछे उसको अलिफ बा भी नहीं पता, उसको नमाज भी ठीक से भी पढ़ी नहीं, इंग्लिश में नमाज पढ़ रहा है, ठीक है ना। इस सड़क पे कोई 90 साल का है, इस सड़क पे कोई 12 साल का है, हर एक की स्पीड मुख्तलिफ, हर एक का लेवल मुख्तलिफ, हर एक का इल्म मुख्तलिफ, हर एक की शुरुआत मुख्तलिफ, कोई किसी सड़क से शुरू हुआ था, कोई किसी सड़क से, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी का कोई बैकग्राउंड, किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल, कोई इस सड़क पे दो लोग इकट्ठे शुरू हुए और एक बहुत जल्दी आगे निकल गया और एक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, कोई बात नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस दुआ में हमने मंजिल की तलब नहीं की, सड़क की तलब की है। अजीब दुआ है, हिदायत मांगी जाती है मंजिल के लिए, हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती है। आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं, आपका मकसद क्या है, बस सड़क, नहीं सड़क से कहां जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो, कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो, आपका असल मकसद होता है सड़क कहाँ लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज़, हमने क्या मांगा है, अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुँचा दे, या मुझे अपने तक पहुँचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हुए। हिदायत किस चीज़ की है, हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है, इससे हमें क्या सीखना है, हमें सीखना यह है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर 2 कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं 1,000 कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही, ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना, ना हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है, बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके

0: ना चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है एहदिना सिराता मुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज रह गई और वो ये है कि
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बगीना YouTube चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजज़ा।
0: जिस तरह आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। एहदिना सिरातल मुस्तकीम।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum. My name is Atia. I'm from Luton.
5: My name's Yasmin. I'm from Bedford.
6: My name is Shadia. I'm from Luton.
7: My name's Nadia, I'm from St. Albans.
8: I'm Miss Pa, I'm from Luton. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
9: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
10: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
11: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
10: We can also offer guaranteed rental income.
11: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
12: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your aim, check it twice, study smart, don't roll the dice. Small steps forward, day by day, exams are conquered your way. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
13: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
14: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
15: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोन सा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: लास्ट टाइम ऑन आखिरी मोजज़ा।
1: हिदायत सड़क के लिए नहीं मांगी जाती, आप मुझे बता दें सड़क पे कैसे पहुंचूं। आपका मकसद क्या है? बस सड़क नहीं, सड़क से कहां जाएंगे, बस आप सड़क पे पहुंचा दें, बाकी मुझे कोई फिक्र नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो? कभी भी नहीं होता कि आपकी असल गायत, आपका असल मकसद सड़क हो। आपका असल मकसद होता है सड़क कहां लेके जा रही है। लेकिन इस सूरत में हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम कहें असल मकसद मेरा जन्नत है या अल्लाह से मुलाकात है, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो तुझ तक पहुंचा दे, या मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बता दे, ये भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। हिदायत किस चीज की है? हिदायत मुझे किसी तरह इस सड़क तक पहुंचा दे, बस। अजीब बात है।

0: इससे हमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखना ये है कि इस्लाम में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में मुझे अंजाम से दिलचस्पी कम है, सफ़र से दिलचस्पी ज़्यादा है। मैं अगर दो कदम चला इस सफ़र में और मेरी मौत हो गई, कामयाब हो, अगर मैं हज़ार कदम चला और मौत आ गई, कामयाब हो, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं मैं कितना चला, बस इतना है कि मैं इस सड़क पर था और इस सड़क पर मैं चल रहा था। अब एक अगर ये बात समझ आ गई ना, तो मुझे किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की दिलचस्पी नहीं रही। ये तो मुझसे आगे निकल गए, ये तो मुझसे पीछे हैं, इनको भी ना ना ना ना ना, हर एक का अपना पेस है, हर एक की अपनी स्पीड है। बहुत कुशादगी है इस रोड में भाई, आप किसी के पीछे नहीं फंसे हुए। कुछ लोग आपके साथ चल सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो करते हैं सपोर्ट आपको। आप एक दूसरे को जो रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनका आप सामना कर सकते हो। साइड पे और रोड्स हैं, उन पे बड़े प्यारे प्यारे साइंस लगे हुए, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न ले लो, इधर भी आ जाओ, थोड़ी देर हमारे साथ भी थोड़ा टाइम गुजार लो, और आपका दोस्त आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नहीं यार बहुत थक गए, एग्जिट तो ले लो यार, थोड़ा सा इस बस इस वीकेंड एग्जिट ले लें, उसके बाद तक उन बादी ही कौमन सालिहीन, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे ना, चलते रहो साथ, जो साथ होगा ना वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको सीधा चलाता चला जाएगा। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है इहदिनस सिराता अलमुस्तकीम में, लेकिन इसमें सिर्फ बस एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि अगर सिरात खुद ही से डिक्शनरी के अतबार से सीधी है तो फिर मुस्तकीम का क्या फ़ायदा? अगर इहदिनस सिराता कहा होता तो सीधा रास्ता वैले ही था, और मुस्तकीम से उसके सीधे होने में इजाफा नहीं हुआ। मुस्तकीम असल में कहा जाता है अरबी में इस्तकामा से, कामा से निकला है, जो क़ियाम से मुतालिफ़ है। क़ियाम किस चीज़ को कहते हैं? खड़े होने को। मुस्तकीम है जो वजीनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, जो स्केल होता है ना, मीज़ान जिससे सौदा वगैरह वे किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है ना, सीधा खड़ा करना। मुस्तकीम है जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, मुस्तकीम ऊपर की तरफ होता है। तो ये सड़क सीधी भी है, कुशादा भी है, और जितना आप इस पे चलोगे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है। ये भी एक इसमें इस्तेआरा है, इसमें एक मिसाल दी जा रही है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो। यरफ़ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला आप में से जिनका इल्म है और जो अहले ईमान है और जिनको इल्म दिया गया, उनके दरजात को ऊंचा करता रहेगा। आपके दर्जे जितना आप इस रस्ते पर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ऊंचे हो रहे हो। आप इस मिसाल को समझो, जितना मैं ऊंचा जा रहा हूं, पीछे क्या रह गया? दुनिया और दुनिया वाले लोग जो इस रस्ते पे चलना नहीं चाहते ना, उनसे मेरी दूरी होती चली जा रही है, क्योंकि मैं इस रस्ते पे चल रहा हूं और वो लोग अभी ज़मीन पर हैं, और मैं एक तरह से मेरा उनसे फासला बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो ना, तो आपकी कंपनी में थोड़ा फ़र्क करना शुरू हो जाता है। आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जब भी आप मिलते हो, आपने बात करनी होती है फैशन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, कुछ 7-8 टॉपिक्स हैं उसी के अंदर, या दोस्तों के बारे में, या फलाने के इंस्टाग्राम के बारे में, या फलाने के टिकटॉक के बारे में, या किसी की गीबत, या किसकी शादी, और किसकी मंगनी, और किसका कितनी अब रस्में कितनी हैं, 15-16 है रस्में, नहीं अब नंबर इंक्रीजिंग, मायू एंड पायू एंड शायू एंड टायू, आई डोंट नो, यही बातें होनी है बस। वापस रास्ते पे चलना शुरू करते हो, वो बातें तो हैं, क्योंकि उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है आपकी, आपको एक फासला महसूस होता है कि इस कंपनी में कुछ दिल नहीं लग रहा कोई, या इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि ये बातें मुझे इस रास्ते से खींच रही हैं, मुझे दोबारा नीचे लेके आ रही हैं। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ रह गया, ज़मीन की तरफ रह गया। वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो हम उस इल्म की बुनियाद पर उसको ऊंचा कर देते। कुरान क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला से? या अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिस पे हम चलें तो हम क्या होते चले जाएं? ऊंचे। अच्छा, ऊंचाई का एक और फ़ायदा है, जितना इंसान ऊंचा जाता है उसके व्यू में क्या फ़र्क पड़ता है? ओहो, उसको बहुत आगे की नज़र आती है, उसको बहुत पीछे की नज़र आती है, उसको वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं जो औरों को नज़र नहीं आ रही, उसको नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसकी उसका जो मंज़र है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो ऐसा हो जाता है कि जो बाकी ऊपर नहीं पहुँचे हुए ना,
1: वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कहता है मुझे ये नजर आ रहा है, कहते क्या पागलवानी बात कर रहे हो, यहाँ तो दरख्त है। नहीं, इस दरख्त के पीछे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे एक दरिया है, उस दरिया के पीछे पहाड़ है। क्या यार, ये रेस्टोरेंट है बस, आपको वो बाकी आगे की चीज नजर ही नहीं आ रही, और फिर पीछे की चीज आपको नजर नहीं आ रही। जिसका जिसका व्यू ऊंचा ना हो, उसको सिर्फ जो इमीडिएटली उसके सामने है, फौरी तौर पे उसके सामने है, उसको वो नजर आएगा। जो फौरी तौर पे कल उसके पीछे है, वो उसको नजर आएगा। जो कुरान के जरिए से ऊंचा होता चला जाता है ना, उसको बहुत आगे क़यामत का दिन भी नजर आना शुरू हो जाता है, और बहुत पीछे आदम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आनी शुरू हो जाती है। मंजर बदल जाता है ना आपका, और फिर आपको पूरा एहसास होता है मैं हूं कहाँ पे। मैं आपको हाइकिंग की मिसाल देता हूँ। हाइकिंग में अगर कोई कोई किसी जंगल में पहाड़ में कहीं गुम जाए ना, तो क्या हिदायत दी जाती है पता है, क्या इंस्ट्रक्शन होती है? आप हाई एलिवेशन पे जाओ, क्योंकि अगर आप हाई एलिवेशन पे जाओगे तो आपको व्यू मिलेगा, फिर आपको अंदाजा होगा आप कहाँ खड़े हो। जो जितना इस रास्ते पे चढ़ेगा उतना उसको वाकई में अंदाजा होगा वो खड़ा कहाँ पर है, मैं हूं किस मोड़ पर अपनी जिंदगी में। एक दिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐसे जैसे हम अल्लाह ताला से कह रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये भी नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़ा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, आप बता दें, आप इस रास्ते से बता दें, आप मेरे व्यू को, मेरी नज़र को बदल दें, मेरी बसीरत को बदल दें। असल में यही, जहाँ तक मैं जितना मैं कुरान के बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ नतायज हैं जो दिल में खुप जाते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नतीजा मेरे अपने लिए पर्सनली ज़ाती तौर पर वो ये है कि कुरान के बुनियादी मकासद में से है कि जिस लेंस से मैं दुनिया को देखता हूँ ना, वो बदल जाती है। अपने आप को देखता हूँ, अपने ताल्लुकात को देखता हूँ, दुनिया को देखता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, उस पर असर पड़ जाता है। जिस तरह ना आप अगर ऐनक सनग्लासेस पहनते हो, उसका लाल रंग का शेड हो तो सारी चीज़ें लाल नज़र आती हैं, ब्लू हो तो सारी ब्लू नज़र आती हैं, कुरान हो तो सारी चीज़ें कुरान के लेंस से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपका एक व्यू बदल जाता है। और यही एक बुनियादी मकसद है कुरान का, कि अगर वो नज़र आना शुरू हो जाए तो सीधा रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है, और जो गलत रास्ते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं दूर से ही। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम। आई थिंक यू गाइस विल रियली एंजॉय दिस सेशन, ये सेशन स्पेशल। किसी को याद है इतनाब क्या होता है? मैंने कहा था इतनाब कोई चीज़ होती है, एक ही लफ्ज़ दो दफ़ा कहना, जबकि दो दफ़ा कहने की ज़रूरत बज़ाहिर ना थी, अगर आप ना कहते तो फिर भी बात वाज़े हो जाती, राइट? तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। जिस तरह हमने पहले कहा था, कुरान में एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई कमी नहीं है। सिरात का लफ्ज़ भी दो दफ़ा आया, अस्सिरात अल मुस्तकीम, और फिर दोबारा क्या, सिरात अल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये भी कहा जा सकता था अस्सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ी, और इसी के साथ जोड़ के सिरात अल मुस्तकीम अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, और मुख्तलिफ उसके असालीब मुमकिन थे। लेकिन दोबारा ज़िक्र करने का मकसद ये है कि इस सड़क के बारे में अल्लाह ताला ने हमें इस राह के बारे में दो चीज़ें समझने की हिदायत दी है। एक, कि हमें दूसरों के लिए इसमें जगह बनानी है, इसमें कुशादगी है। दूसरा, इस सड़क पर चलने के लिए अगर हमें कामयाब रहना है तो हमें अपने से पीछे देखना पड़ेगा। अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने पहले से ही नेमत की। नेमत को भी समझ लें, उर्दू में हम नेमत तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेमा अरबी में नुमा से निकलता है। नुमा कहते हैं नरमी को, आसानी को, आराम को। जानवर जो आराम से चलते हैं ना, जैसे बिल्ली तेज़ चलती है, कुत्ता तेज़ चलता है, लेकिन गाय भैंस आराम आराम से चलते हैं, तो उन्हें अनआम कहा जाता है क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं। नईम अरबी में कहते हैं कोई चीज़ जो हो वो बहुत नरम हो। इनाम से मुराद है अल्लाह ताला ने जिसके लिए आसानियाँ पैदा की, जिसके लिए चीज़ जो है वो सहूलत वाली बनाई। सिरात लज़ीना अनअमत अलैहिम में इस बात की तरफ इशारा है कि अगर सफ़र बहुत लंबा है और सीधा है तो इसका मतलब है और ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाय द वे, जितना सफ़र ऊपर की तरफ जाता है, जितनी रोड में एलिवेशन होती है, उतना मुश्किल होता है और थकाने वाला होता है। तो जितना इंसान थकेगा उतना इम्कान है कि वो फिर आधे रास्ते में छोड़ देगा या पीछे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या हमने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह कुछ लोगों के लिए आपने ये मुश्किल रास्ता भी आसान बना दिया। इस मुश्किल रास्ते में भी आपने आसानियां पैदा कर दी, सहूलतें पैदा कर दी। वो कौन लोग हैं उनके बारे में हमें बता दें। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, इसकी एक आसान मिसाल भी समझ लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो और आप कोई डिग्री कर रहे हो और आपको नसीहत चाहिए कि मैं करियर में क्या करूं, आप किससे पूछोगे? क्या आप उससे पूछोगे जो फर्स्ट ईयर में है आपकी तरह, या आप उससे पूछोगे जो ग्रेजुएट हो चुका और अब इंडस्ट्री के अंदर है? किससे पूछोगे? ग्रेजुएट से पूछोगे ना, जो आपके साथ है वो आपकी तरह, वो भी गुमा हुआ है, आप भी कंफ्यूज। वो आपको एडवाइस तो बड़ी देगा लेकिन उसकी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, वो इस रास्ते से गुजर नहीं चुका। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा उन लोगों का रास्ता जिनको आप, जिन पर आप इनाम करते हैं, नहीं, उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके। माजी इसलिए कि हाल में जो लोग अल्लाह ताला आज उन पर इनाम कर भी रहा हो, उनके कल की कोई जमानत नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी सी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हो सकता है बाद में वो रास्ते से गिर जाए। हर इंसान गिर सकता है, किसी को कोई गारंटी नहीं है। और ये भी हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हिदायत राफ्ता है, याफ्ता है, इसको फॉलो करोगे तो जन्नत मिलेगी। हयात में से जो भी हयात है ना, उससे मैं आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कह सकता हूँ ना आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि हिदायत तो इस शख्स के पास है, इस पर अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, इसको फॉलो करोगे तो बस जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम में से कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है, बल्कि गिरे ना भी जानबूझ के या बगैर, यानी जानबूझ के गलती से भी गलती कर सकता है इंसान। उसके फहम में गलती हो सकती है, उसके अमल में गलती हो सकती है, उसकी समझ में गलती हो सकती है, मुमकिन है कि नहीं? तो अगर हमें कोई ऐसा रोल मॉडल चाहिए जो गारंटी हो कि इसको फॉलो करना है तुम गलती नहीं होगी, तो वो ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो पूरे रास्ते से गुजर के अंजाम तक पहुंच चुके, फिनिश लाइन तक पहुंच चुके। उससे उसके अलावा किसी से मैं सपोर्ट तो ले सकता हूं, लेकिन उस पर मैं 100% डिपेंड नहीं कर सकता। भाई भी बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि इस बाकी मजाहब में क्या हुआ बताए, हिंदुइज्म में पंडित है, कैथोलिसिज्म में पोप है, और ये जो शख्सियतें हस्तियां होती हैं क्या करते हैं लोग, उन पर 100% डिपेंड करते हैं। ये मुझे आखिरी रोड तक ले जाएगा, ये मुझे मेरी ज़िंदगी ये संवार देगा, मेरे गुना ये माफ़ करवा देगा, मेरी ख्वाहिशें ये पूरी करवा देगा। यानी जो हयात हैं उससे हम सीखें, लेकिन एक हद तक। अब देखिए, सहाबा में से 10 हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि 10 को जन्नत की ज़मानत दी गई, गारंटी कर दिया जन्नत मिलेगी 10 को। उनमें से एक उमर बिन खत्ताब हैं कि नहीं है? और उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं और उनके कपड़े देख के एक औरत से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा यह आपने बैतुल माल से अपने हक से ज़्यादा लिया है, उनका खुतबा इंटरप्ट कर दिया उसने, उनकी पकड़ की, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। ऐसा क्यों हुआ? अगर वाकई वो जन्नत का उनको वादा कर दिया गया है और मैं उस क्राउड में बैठा होता तो मेरे जहन में तो कभी सवाल ना आता, अगर सवाल आता भी तो मैं कहता नहीं, तो जन्नती हैं, उनकी तो 100% पैरवी करनी है। लेकिन आप सहाबा की मिसाल देखें तो क्या देखते हैं, वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि नहीं, एक दूसरे की करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों करते हैं? वो ये नहीं कहते ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इनके बारे में पता है नबी ने क्या कहा है, इनको तो जन्नत मिलनी है, इनको नहीं, इनसे पूछोगे तुम? सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम में जिन लोगों की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है ना, जिसमें कोई खलल नहीं है, और जो पहुंच गए, ग्रेजुएट हो गए इस रस्ते से, वो लोग सब माजी में हैं, वो सब माजी में, उनकी मिसाल हमने लेनी है, और उनमें और बाकियों में एक फ़र्क होना चाहिए। होता यह है क्योंकि हमने असरात लिए हैं और मजाहिब से, मुसलमानों ने सदियों में हमने और मजाहिब से असरात लिए, और उसमें से एक असर हमने ये भी लिया कि हमने ये अकीदत मंदी शुरू कर दी कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के ऐसे पहुँचे हुए बंदे हैं, ऐसे औलिया हैं अल्लाह ताला के, कि बस अगर उनके साथ मेरी सोबत हो जाए ना तो बस जन्नत ही जन्नत है। और यानी उनका एक ख़ास मकाम है, वो उस मकाम पर, वो हिदायत के उस रास्ते पर उनकी गारंटी हो चुकी है,
0: अब ये गारंटीड शख्स हमारे मोहल्ले में रहता है, तो मैंने अगर इनका हाथ पकड़ के मैं ज़रा चूम लूँ और फिर इनके इनके दस्ते मुबारक से मैं पानी पी लूँ, या तो फिर मेरी भी मगफिरत हो जाएगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं होता, ये और जगहों की बात कर रहा हूँ मैं। ये हज़ारों साल पुरानी गुमराही है, हमारे यहाँ नहीं होती, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यही चीज़ इस्लाम तबाह बर्बाद करने आया था। हमने अब लोग मेरे बारे में भी करते हैं, यार मेरे मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेर दें, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए कर दें, आप बस एक ये लफ्ज़ लिख दें मेरे लिए, मेरी मेरे लफ्ज़ से क्या हो जाए। जैसे आप अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जैसे आपकी कोई गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं, ये माइक मेरे ऊपर लगा हुआ है, इससे मेरी कोई मेरा कोई रुतबा नहीं बढ़ जाता। अल्लाह को मालूम है किसका मकाम ऊंचा है, किसका मकाम नीचे है, ये तो मेरे रब को मालूम है, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आपको इसका कोई इल्म नहीं। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? फिर ये रवैया मैंने जब देखा ना, मेरे कुछ दोस्त थे जो हम मैं जब इस्लाम सीख रहा था और मैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस से गुजर रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनके कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे, तो एक साहब से वो सीख रहे थे, उनके वो बहुत ज़्यादा यानी पैरोकारी में वो लगे हुए थे, तो एक दफ़ा वो एक कॉन्फ्रेंस में आए, वो साहब बहुत पहुँचे हुए अल्लाह ताला के उलिया में से, तो वो चल रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके तालिबे इल्म ऐसे ऐसे चल रहे थे आधे रुकू में। मैं कहा ये कौन सा इस्लाम है, ये इस्लाम तो मैंने कुरान में नहीं सीखा, ये तो मुझे सीरत में नज़र नहीं आ रहा, सीरत में तो मुझे ये मिल रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हैं सहाबा के साथ, और कोई गैर अंदर आता है, कोई अजनबी अंदर आता है, और वो अबू बकर से बात करनी शुरू कर देता है, या रसूल अल्लाह, तो अबू बकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं वो है, यानी उनको पता नहीं चलता था कि रसूल कौन से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर बिन खत्ताब जिनको जन्नत की जमानत दी गई है, दरख्त के नीचे गदा बांध के सो रहे हैं, कोई रैंक नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, कोई ख़ास लिबास नहीं कि वो एक दफ़ा वो आ गए तो फिर नूर आ गया। एक नौजवान मुझे कल मिला था रेस्टोरेंट में, कहता आपकी शक्ल पे बहुत नूर है, मैंने कहा नहीं ये क्रीम लगाई है मैंने कोई नूर नहीं है ये जो हमने बनाया हुआ है ना कि कुछ लोग हैं जिन पे अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है, बहुत ओ हो ये ओ हो ना, ये सिरात लदीना अनअमत अलैहिम इसका तोड़ है। जिन शख्सियात से हमें इम्प्रेस होना है ना, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल कहफ, ये वो लोग हैं जिनके बारे, ये हैं अलदीना अनअमत अलैहिम, इनके बारे में सीखो, इनसे इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने बड़ों की और अपने बुज़ुर्गों की और अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें पोप नहीं बना देना चाहिए, वो एक और मज़हब है, वो इस्लाम नहीं है, वो एक और दीन है। और जब मुझे ये बात समझ आई, मेरे कुछ हलकात में, मैं जब यंग नौजवान था तो कुछ हलकात में कुछ बड़े बड़े आलिम आते थे न्यूयॉर्क में ना, मुख्तलिफ जगहों से, तो लोग उनसे बड़े मुअत्तबाना अंदाज में, शेख साहब एक सवाल है, एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, बस एक सवाल अर्ज़ कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो सवाल उसका वो जवाब देते तो मेरे जहन में एक फॉलो अप क्वेश्चन आता, मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया, उनका जवाब मेरे नज़दीक कामिल नहीं था या कन्विंसिंग नहीं था, तो मैं आगे से सवाल पूछ लूँ, आपने ये बात की लेकिन आयत पे तो कुछ और बात हो रही है, तो आप इसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? इतनी सी बात। और जो उनके सारे फैन बैठे हुए थे ना, वो क्या करते हैं पता है? पता नहीं है कौन है? जैसे एक दफ़ा हज़रत ने जवाब दे दिया तो किसी की क्या मजाल आगे से पूछने की? मैं तो समझा था मैं एक ऐसे ऐसे दीन को फॉलो कर रहा हूँ जिस दीन में फरिश्ते, जब फरिश्तों को कोई बात समझ नहीं आई कि आदम को क्यों बनाया, वो तो खून बहाएगा, उन्होंने बेटोक पूछ लिया अल्लाह ताला से, आप क्या ज़मीन में ऐसी मखलूक डालेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? पूछा भी किससे? अल्लाह से। और अल्लाह ने नहीं कहा तुम किससे पूछ रहे हो, तुम्हारी ये मजाल? ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का रास्ता बगैर पूछे, बगैर क्रिटिसाइज किए फॉलो करना है और आंखें बंद करके फॉलो करना है, वो कहाँ है? वो माजी में है, वो माजी में, सिरात लदीना अनअमत अलैहिम, वो पीछे हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम एक दूसरे से सीख सकते हैं,
1: लेकिन हम में से कोई रास्ते की इंतहा तक नहीं पहुंचा, तो हम एक दूसरे से, हमें आपके फायदे के लिए, आप मेरे फायदे के लिए। और ये जब मेरे अंदर ये रवैया आ गया ना, इसको कुछ लोग बदतमीज़ी कहते हैं, मेरे नज़दीक ये इल्म का रास्ता है, इल्म का सफ़र है और हिदायत का सफ़र। अल्लाह ताला ने मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे लिए बड़े अजीब अजीब दरवाज़े खोले और दुनिया के बहुत सारे उलमा जो हैं उनसे मेरी एक्सेस हुई, उनसे बात करने का मौका हुआ। तो मैं बात करने से पहले ही मैं कह देता हूँ, सर मैं ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा ना, ये वीडियो पे डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने फहम के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तो जो जहन में सवाल आएगा मैं पूछूंगा, बदतमीज़ी लगेगी शायद आपको, लेकिन मैं फिर भी करूँगा सवाल, उन्होंने कहा यही पसंद है मुझे। और फिर मैं करता हूँ, वो बात कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ आपकी दिल में कोई तो क्यों नहीं बनती, इसलिए नहीं बनती, फिर हम डिबेट करते हैं, फिर उनको मेरी बात अच्छी लगती है, वो बात मेरी बुरी लगती है, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करोगे ना तो आपकी आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके फहम में इजाफा होगा। अगर आप यानी लिहाज रखते हुए सवाल ही ना पूछो, जहन में सवाल रहे, बेअदबी होती है, तो आपकी असल वफादारी इल्म से नहीं है, हिदायत से नहीं है, आपकी असल वफादारी लिहाज से है किसी के। मुझे हिदायत के रास्ते में मुझे किसी और चीज़ का लिहाज नहीं है, मुझे बस हक का लिहाज है, बस मुझे हक चाहिए। और मैं वो ये भी ऐन मुमकिन है, और बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कोई चीज़ सीखा, मैंने कोई चीज़ सीखी, मुझे लगा कि ये सही है, दो साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बात सही नहीं है, और ऐन मुमकिन है कि सही नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ अभी मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये सही है, और बाद में कोई दलाइल सामने आए और कोई बात सामने आए और पता चले कि ये बात सही नहीं थी, मुमकिन है, क्योंकि इंसान से गलती होती है, इंसान सीख रहा है, और सीखने के रास्ते में गलत नतीजे पर पहुंचना भी उसका हिस्सा है, उस सफ़र का हिस्सा है। लेकिन इन अल्फाज में सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत मुजमर है, और ये अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है उसको ख़राब होने से बचाया गया है इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से, सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम। फिर दूसरी बात ये भी बता दी कि जो लोग इस सफ़र के इंतहा तक पहुँचे ना, वो इसलिए नहीं कि वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, कोशिश उनकी थी, लेकिन आसानी किसने बनाई, तौफीक अल्लाह ने, अनअमत अलैहिम, ये नहीं कहा सिरात अस्सालिहीन, सिरात अल-अंबिया, सिरात अश-शुहदा, वो अंबिया सालिहीन कितनी अजीम शख्सियतें हैं, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया यहाँ पे, हाईलाइट किया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या किया, आसानी बनाई। अगर सोचो जरा, अगर यहाँ कहा होता, क्योंकि एक और मकाम पर कुरान में فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا, इसकी तफसीर की गई है, किन पर इनाम किया गया, नबी सिद्दीक यानी सिद्दीक जिन्होंने अंबिया की बात को सच माना, शहदा आप जानते हो शहदा कौन है, सालिहीन अच्छे लोग, चार ग्रुप बताए। अगर ये यहाँ लिखा होता, कुरान ने ये बात कही होती यहाँ पर, सिरात النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, अगर इस तरह बात की होती तो असल में उनके मकाम की बात हो रही होती, अल्लाह ताला को जो उन पर इनाम है उसकी बात नहीं हो रही होती। वो तो अंबिया थे, वो तो शुहदा थे, वो तो सिद्दीकीन थे, वो तो सालिहीन थे, हम तो वो नहीं है। यहाँ कहा उनका रास्ता बताएं जिनके लिए आपने आसानियाँ की। अब जिस तरह इस तरह से कहा तो क्या बात सामने आ गई, मेरे लिए भी आसानी कर सकता है, उनके लिए की तो मेरे लिए भी कर सकते हैं। ऐसा रास्ता बताएं कि जब मैं इस रास्ते पर चलूँ, एक दो कदम चलूँ, तो आगे आसानी कहां से आएगी, अल्लाह की तरफ से। आउन का मतलब क्या था, आउन का मतलब क्या था, पहले कोशिश फिर मदद। यहां पहले कहा रास्ता बता दे, रास्ते पे चलूं तो आसानी कहां से आएगी, अल्लाह से आएगी। वही बात दोबारा कही जा रही है सिरात-ए-लज़ीन अनअमत अलैहिम, ठीक है। अच्छा,
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। Coming up next time on Akhri Mojza.
1: तो तवक्को ये थी, हमें सीधा रास्ता दिखाएं, उसकी हिदायत दें, उनका रास्ता जिनको आप पहले भी हिदायत दे चुके, हिदायत ही तो मांगी थी, तो हिदायत याफ्ता लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन हिदायत के लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनाम। यानी एक तब्दीली लाई गई है कलाम के अंदर, इसको भी नोट करने की ज़रूरत है। सिरात-ए-लज़ीना हदैताहुम के बजाय सिरात-ए-लज़ीना अनअमत अलैहिम, इससे क्या फर्क पड़ता है।
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.